0: 89.6 MHz
1: हिमाल पहाड़ तराई।
2: विजया दशमी शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व बड़ा दशैं शुभ दीपावली एवं छठ पर्वको पावन अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको घर आँगनमा खुशी उमंग र उत्साह ल्याओस्। आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्दै जाओस्। स्थानीय उत्पादन उद्यमशीलता र व्यवसाय प्रवर्धनमा थप ऊर्जा। विजया दशमी शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

0: बड़ा दशई, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। ज्ञान, संस्कार, विज्ञान, अनुशासन र उज्जवल भविष्य निर्माण को यात्रा में अघि बढ़ी रहेका संपूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षा प्रेमी एवं संपूर्ण विश्व में रहनुहुने नेपालीहरूमा महान पर्व बड़ा दशैं, शुभ दीपावली एवं छठ पर्वले सुख शांति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं ज्ञान विज्ञान को क्षेत्र में सफलता प्राप्त होस् भन्ने हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: ज्ञानपुञ्ज इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल राजपुर कपिलवस्तु, प्रिंसिपल नारायण प्रसाद पौडेल, संपर्क नंबर 98573।

0: बड़ा दशैं, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। ज्ञान, संस्कार, विज्ञान, अनुशासन र उज्जवल भविष्य निर्माणको यात्रामा अघि बढिरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षा प्रेमी एवं सम्पूर्ण विश्वमा रहनुहुने नेपालीहरूमा महान पर्व बड़ा दशैं, शुभ दीपावली एवं छठ पर्वले सुख शान्ति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होस् भन्ने हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: आवर विजडम इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल बैरिया कपिलवस्तु, प्रिन्सिपल नारायण शर्मा, सम्पर्क नम्बर 9847404।

0: मिल्दैछ कि ब्रो?
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए,
0: राम्रोसँग ल गाइदिए,
2: हाँसे
0: मुच्चे।

0: लागल गटिया नियमर साली मैया लगई
1: जस्तो मै पटाबा
0: पटाबा त चोलो जाय नाछेर लसन ससन पने नाकाम छोरो
1: मै लाज लठा महिना जे टुना छेर
0: जाय
1: महिना जे ठुका
0: चोलो जाय का
1: जैना हट
0: जाय
1: चोलो तो जाय।

0: दागार के महीन से लड़ना बनेबू, प्रेम के लड़ाई में कुछ हो जाए कलर से, अपन सुतमुत झोंकी में तुहिन भरना करेबू।
1: अकेली रात भर कर फिरती फिरती केवल तुहार याद में भुवर गया।

मोर लैहर हो कालू तुहार ससुराली, हमार मैया प्रेम में आगिल बाबा हारी, अब तो विश्वास लागल मैं तो हर घर वाली।

0: लसुन का पटिया किनारा लागल गटिया ये मुरसाली मैया लगाई
1: तो जिसके तो मैं पटाबा
2: पटाबा तो चोलो जाए नाचेरा लसुन ससुन पने ना काम छोरो
1: मैं लास लगता मैं नहीं जेठू नाचेरा
2: जाई
1: मैं नहीं जेठू का
2: चोलो जाई का
1: जाई ना होता
2: जाई
1: चोलो तो जाई।

0: दादार के बहन से लड़ना हुआ नहीं बू प्रेम के लड़ाई में कुछ हो जाए कलर से अपन खुदमु झोंकी तू हिम भरना कर रही बू
1: अकेली रात भर कर फिरती फिरती केवल तुहार याद में भूअर ध्यान कर रही थू सखिया और सहेली से तुहार के लग तारीफ यह हुई मोर राजा कई कसी नहीं छू।

वाली मोर लैहर हो कालू तुहार ससुराली हमार मैया प्रेम में आगिल बाबा हारी अब तो विश्वास लागल मैं तो हर घर वाली।

0: बड़ा दशैं, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। ज्ञान, संस्कार, विज्ञान, अनुशासन र उज्जवल भविष्य निर्माण को यात्रा में अघि बढ़ी रहेका संपूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षा प्रेमी एवं संपूर्ण विश्व में रहनुहुने नेपालीहरूमा महान पर्व बड़ा दशैं, शुभ दीपावली एवं छठ पर्वले सुख शांति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं ज्ञान विज्ञान को क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो भन्ने हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: पशुपति माध्यमिक विद्यालय सालसन्धी, प्रिन्सिपल हरिप्रसाद थापा, सम्पर्क नम्बर 9857321555।

0: Thank you.
1: विजयादशमी शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। असत्यमाथि सत्य धर्म र सद्भाव को विजय को प्रतीक का रूप मनाइने नेपालीहरूको महान पर्व बड़ा दशैं शुभ दीपावली एवं छठ पर्व को पावन अवसर में संपूर्ण सदस्य

0: अब जाए के घर के दीवार लिपोती के उराय लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के दीवार लिपोत के नाई खत्म भवा। खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: उराय लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: होते अम्मा। ओहो, यही दिवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे, अम्मा हमें साफ दसलीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दसलीस बिटिया?
2: यही दही है हाथ में, दसलीस अम्मा।
1: अरे अरे, क्यों क्यों? अरे है क्यों? हमरे मुस्कान बिटिया का साफ दसलीस। अरे क्यों है, क्यों है?
3: अरे कहा हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप दसलीस की काओ।
3: ना घबराओ जय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: होता है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से और हाथ के चूड़िया खोल दिया जाए, दस लिया ओकरा हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और साथ दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, साथ दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो जहर मोहरा लाई के सपुआ डसी लिए जगह पर लगाई दे तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहाँ जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दे जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाए। कहा जाए तब तक हमरिन के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम कैसे देखे करा? हाँ लियो snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा। हमरिन के गाँव से तो गोर सिंहिया सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वही ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए।
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए, मिला तो मुस्कान का बताए सका जात है।
1: जी हो थे बाबू, चलो।
4: याद रखा जाए, सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कोनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर उन लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाए सका जात है और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे की मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: खुशीको खबर, विगत 4 दशकदेखि बुटवलमा निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको आले डेन्टल अब कपिलवस्तुको 4 नम्बर जितपुरमा यही श्रावण 4 गतेदेखि शुभारम्भ भई सञ्चालनमा आइरहेको छ।
8: शुभारम्भको अवसरमा विशेष छुट। थप जानकारीका लागि आले डेन्टल बाढगंगा 1 जितपुर कपिलवस्तु एभरेस्ट बैंक नजिकै।
9: क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार विराटनगरमै। सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार, शल्यक्रिया, रेडिएसन सहित न्युक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छन्। नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यति एयरलाइन्स मार्फत 2 तर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालो खोज्नु पर्दैन। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर 1 क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 97 61 00 25 30।

दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

को अवसर साथ ही हरेक महीना होने भाग्यशाली उपहार आइडिया को साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जितने मौका साइड बाई साइड र मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर किन्दा इंडक्शन निःशुल्क फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी टॉप लोड में 4 केजी र सेमी ऑटोमेटिक में 2 केजी सॉफ्ट एक्सटेंड निःशुल्क डिश वॉशर किन्दा 2 वटा वॉशिंग टैबलेट निःशुल्क आइडिया दसैंको खुशी घर घर में उपहार।

0: उफ, अब जाए के घर के देवाल लिपोती के उराय लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: उराय लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बना के धाई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: होते अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे अम्मा, हमें सांप डसलीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ डसलीस बिटिया?
2: दही हाथ में डसलीस अम्मा।
1: अरे अरे, क्यों क्यों? अरे है क्यों? हमरे मुस्कान बिटिया का सांप डसलीस। अरे क्यों है, क्यों है?
3: अरे कहाँ हुई गवा, कहाँ हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप डसलीस की काओ।
3: ना घबराओ जय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: होता है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से, और हाथ के चूड़िया खोल दिया जाए, डस लिया ओकरा हाथ न चलाव जाए।
1: होते बाबू, और सांप डस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी, नहीं काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और न हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: होता है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और

0: करे चाहिए और कुछ ना ही खियावे चाहिए और नियम ना ही बुझा गए ना।
1: तब तो जहर मोहरा लाई के सपवा डसी ली है जगह पर लगाई गई तो बाबू
0: वो नहीं काकी घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए बुझा गए ना।
1: बुझेन बाबू बुझेन
0: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये कहा जाए तब तक हमरिन के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम पे के देखे करा हाँ देव snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा हमरिन के गाँव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आ गए
0: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए मिला तो मुस्कान का बचाए सका जात है।
1: जी वो थे बाबू चलो
2: याद रखा जाए सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बुलावा जाए सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए या कौनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
3: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है लेकिन वो डस सकत है संभव होए तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
2: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे के मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मित्रांका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश समिति सदस्य विष्णु चौधरी समिति परिवारको तर्फबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। यी पर्वहरूले सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र खुसी ल्याओस् आपसी सद्भाव एकता भाइचारा र सामाजिक सद्भाव अझ प्रगाढ बनाउँदै राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् माता दुर्गा भवानीको कृपा सबैमा रहिरहोस् विजया दशमी दीपावली तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

अवसर। साथै हरेक महिना हुने भाग्यशाली उपहारमा आइडियाको साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जित्ने मौका। साइड बाई साइड र मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर किन्दा इन्डक्सन निशुल्क। फ्रन्ट लोड वासिङ मसिनमा 6 केजी, टप लोडमा 4 केजी र सेमी अटोमेटिकमा 2 केजी सेल्फ एक्सेल निशुल्क। डिश वासर किन्दा 2 वटा वासिङ ट्याब्लेट निशुल्क। आइडिया, दसैँको खुसी घर घरमा उपहार।